0: ये है
1: Laika Gold, the voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India,
0: live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
1: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
0: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
2: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
3: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
2: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
3: गारंटेड
2: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
3: फोन 02085748410।
2: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: Packed for the trip? Gifts? Passport?
5: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
4: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
5: Simzy?
4: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com.
7: T's and C's apply.
8: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए? लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो, डिजिटल या इवेंट, सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए, कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
9: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: Laika Gold. CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में. रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ. हमारे राम, बुक योर टिकट्स नाउ. विजिट www.eventimapolo.co.uk. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
1: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
1: High appreciation.
2: In Dubai.
3: रात भर न थमे न रुके, क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: लाइका गोल्ड CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India और दुबई में हाउसफुल शोज के बाद अब पहली बार लंदन में देखिए आशुतोष राणा को एज रावण और राहुल आर भुचर को प्रभु श्री राम के रूप में रामायण की अनडिस्कवर्ड स्टोरीज लाइव ऑन स्टेज 9 से 12 जुलाई इवेंटिम अपोलो हैमर स्मिथ हमारे राम बुक योर टिकट्स नाउ विजिट www.eventimapolo.co.uk एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक आर Radio.
1: 8 days to go. Get ready to sing along with Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
2: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. Leica Radio और Leica Gold आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@leicaradio.com.
3: रात भर न थमे न रुके क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर

सो मैं विसर ना जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जागले, जे तिस नदर ना

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध

होए लख दरियाओ कुदरत कवन कहां विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भखाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई है भी हो।

ना जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पका।

0: 208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
1: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
2: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14th to 21st June वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
3: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444 24 hour line.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री परफेक्ट फॉर कैफेज रेस्टोरेंट्स ऑफिसेज शॉप्स पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम
4: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com limited offer terms and conditions apply
6: Be part of a historic grand opening.
7: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
6: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
7: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
6: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
8: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.
9: 8 days to go. Sing along with Adab Aslam live at the O2 on the 14th of June. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
10: Attention meat lovers of Rayner's Lane.
11: This is huge.
10: Thadik Halal is opening in Rayner's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
11: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
10: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
11: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rayner's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
10: Thadik Halal, Rayner's Lane. There is only one.
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
13: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. 28 साल का भरोसा, हर साल हजारों happy travelers. इसलिए families के लिए Star Tours experience अलग होता है. Visit StarTours.co.uk.

0: को बना दो रस्सी, कॉफी को लस्सी, टॉफी से निकालो टॉफी एक नहीं अस्सी।
1: ये तो झूठ, ये तो झूठ,
2: ये तो झूठ,
1: झूठ झूठ।

0: किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में मिस्टर नटरलाल फिल्म से था ये गाना, जिसमें म्यूजिक था राजेश रोशन का, और उससे पहले वारिस फिल्म का गीत जिसका म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने, और आपने दो बैक टू बैक गाने सुन लिए हैं। और लीजिए, इन दो गीतों के साथ आज के द ऋतु शर्मा शो की शुरुआत हो गई है। तो आपको बताती चलूं कि इस शो में अब से लेकर दोपहर के 1 बजे तक मैं ऋतु शर्मा आपके साथ रहूंगी, और जैसा कि हमेशा होता है सुनवाऊंगी एक नहीं दो नहीं ढेर सारे बॉलीवुड क्लासिक्स, और उसके साथ साथ सैटरडे के दिन शो में जो कुछ भी होता है वो आज भी होगा। लेकिन सबसे पहले आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मोहब्बत भरा सलाम, और आपको बता दें कि ये है लाइक अ गोल्ड इन ग्रेटर लंदन, लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, एंड लाइक अ रेडियो इन मिडलैंड्स। और हमारे बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सब एक ही बात कह रहे हैं कि ऋतु देख लो, मौसम बदल गया। जी हाँ, लास्ट वीक से बरसात की शुरुआत क्या हुई कि बस समझ लीजिए हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके बारिश हो ही रही है, और मौसम में भी कुछ ठंडक है। ये ठंडक तो हमें अच्छी लग रही है, लेकिन समर में इतनी सारी बारिश, क्या किया जाए, कुछ नहीं कह सकते। बस मौसम को एंजॉय कीजिए, ईश्वर ने जो दिया है उसे एंजॉय कीजिए, खुश रहिए और हमारा साथ यूं ही देते रहिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बताते चलें कि आज 1 पाउंड आपको देगा 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफ़र आपको हमेशा की तरह करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप के थ्रू। और हाँ, एक और बात बता दें कि आप 75 पाउंड का वाउचर एवरीडे विन कर सकते हैं व्हेन यू सेंड ओवर 1000 पाउंड्स, एंड ऑल्सो अ 1 ग्राम गोल्ड कॉइन every week when sending over 2000 pounds. Terms and conditions do apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन
0: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट दिशा राइस का है जमाना दिशा बासमती राइस
2: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी सिंग्सबरीज कच्चा बाजार समीर बाजार मोर फूड्स सीरा साउथ हॉल डेगनम सुपरमार्केट ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड दिशा राइस कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस
3: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
4: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
3: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
4: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
3: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
4: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
3: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
5: वेडिंग्स सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
6: बोले क्या कर रहा है रे
7: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ
6: ये तो बताओ कोई पता चला
8: गुरु गुरु इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून
9: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून टू बुक कॉल 0208-514-5400 बुक ऑनलाइन एट इवेंटब्राइट
11: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड
12: लंदन में एक महान धार्मिक अवसर यूनिटी इन डिविनिटी प्रेजेंट्स महासोम यज्ञ 14 से 21 जून वुडलेन स्टैनमोर के टेंपल ग्राउंड्स पर फ्री एंट्री सपरिवार अवश्य पधारिए रोज सुबह 10 से 3 बजे तक यज्ञ और 4 से 7 बजे तक मनोरथ फॉलोड बाय महाप्रसाद आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वॉलंटियर बनना चाहते हैं या यज्ञ सेवा लेना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर करें वेन्यू टेंपल ग्राउंड्स वुडलेन स्टैनमोर HA74LF फॉर मोर डिटेल्स somyagna.com कॉल 07932623852
13: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
14: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
13: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
14: And you didn't pay those massive roaming charges?
13: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
15: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
16: Be part of a historic grand opening.
17: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
16: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
17: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
16: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
18: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
19: Must be won.
20: Must be won.
21: Must be won.
22: Must be won.
18: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today.
23: Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
24: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
25: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
26: Feel Good Track. Brought to you by Derry Valley.
27: Soft and tender, like grandma's warm hug, Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit DairyValley.net.

0: तारिक कुमार शानू के फैंस के नाम पर जाता है। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना, जिसमें कुमार शानू का साथ दे रही थी लता मंगेशकर। वन ऑफ माय फेवरेट, या कहूँ हम सब का फेवरेट गाना, जिसमें म्यूजिक था जतिन ललित का। और जैसे ही गाने आपको सुनवाती रहूंगी, एक बजे तक आप बस मेरा साथ देते रहिए, और आप मेरा साथ दे रहे हैं क्योंकि आपके मुझे ढेरों मैसेजेस मिले हैं। तो चलिए डालते हैं आपके मैसेजेस पर एक नजर।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: तो बिल्कुल आप अपना मनपसंद रेडियो स्टेशन सुन रहे हैं, और आज के मैसेजेस की शुरुआत सबसे पहले की है हमारे हिमांशु पटेल जी। आपने प्रोग्राम सुन रहे हैं, स्वागत है आपका। रुखसाना अफजल हमें सुन रही हैं रॉचडेल में। गुड मॉर्निंग रुखसाना, स्वागत है आपका इस शो में। तोची पनेसर जी स्वागत है, भरत गंगाराम जी आपका भी स्वागत है, और कहते हैं मौसम का मजा ले रहे हैं आपके यहाँ से बजने वाले गीतों के साथ। क्या बात है, इससे अच्छा और क्या काम हो सकता है वीकेंड पर। खास तौर पर स्वागत है आपका, थैंक यू। स्वागत है सहर आपका। एंड विजय गुडोरी जी सटन में आप हमें सुन रहे हैं, और हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत ही सुंदर विचार हमारे साथ शेयर किया है, और इसमें लिखा है कि किस्मत का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है, किस्मत का लिखा सब कुछ सहना पड़ता है, क्योंकि परेशानियाँ बेची नहीं जा सकती और सुकून खरीदा नहीं जा सकता। बस यही कहूंगी कि जीवन में आपके परेशानियां ना के बराबर हो और आपका जीवन सुकून से भरा हो। इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हैं। राजीव पटेल जी, थैंक यू सो मच। क्या कर रहे हैं आप, टीवी पर क्या देख रहे हैं? आपने फोटो खींचकर भेजी है, और साथ ही साथ आप हमें भी सुन रहे हैं। चलिए स्वागत है मिस्टर शेख, बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। एंड राजेश जी कहते हैं हमारी नमस्ते, सुप्रभात, और आपको शनिवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा हफ्ता बारिश, हवा और ठंडे वेदर वाला रहा, और देखिए वीकेंड भी ऐसा ही हो गया। लेकिन आपने लिखा है कि बाहर का मौसम जो भी हो, हम अपने अंदर का मौसम खुशियों से भरा रख सकते हैं, और आप मेरा साथ दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, और आपका विचार बहुत ही सुंदर है। महेंद्र बजारिया जी, अर्जन जी, हमारी मालती जी आज बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी हैं, और आपने लिखा है कि आप बीमार थी, हॉस्पिटल में थी, क्या हो गया था आपको, मुझे तो खबर ही नहीं थी। उम्मीद है अब आप ठीक होंगी, सब कुछ अच्छा होगा, और बहुत खुशी है कि आज आपने इतने दिनों बाद मैसेज भेजा है और आप हमारा साथ दे रही हैं। तो बस ईश्वर से यही कहती हूँ कि आप जल्दी से पूरी तरह ठीक हो जाएं, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। संध्या भावसा जी, थैंक यू। हरीश खत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जासू जी, प्रज्ञा जी, हरीश रुदा, एजाज जी, चश्म से निर्मला जी, सुरजीत जी, रोशनी, अनिल सोना वियाना से, हमारे गिरीश जी भारत से, सलमा जी और मितुल पटेल, एंड ऑफ कोर्स हमारी फरजाना। और ये मैसेजेस बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला मैसेजेस का, इसलिए आगे बढ़ जाती हूँ। और मौसम थोड़ा रोमांटिक सा है, तो एक और रोमांटिक सा गीत मेरी ओर से आप सबके लिए।
2: ये है लाइका गोल्ड, 10:35 AM।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: तो भाई रोमांटिक सा मौसम है और ये बारिश वाला मौसम मुझे तो रोमांटिक मौसम लगता है। और हमारे मितुल पटेल जी का कहना है कि उन्हें भी बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। आप लिखते हैं आई लव रेन, हाँ मुझे भी अच्छी लगती है अगर आपको परेशान नहीं कर रही। और ऐसे रोमांटिक से मौसम में रोमांटिक गाने मैं आपको सुनवाती ही रहूंगी। ये गीत आंखों आंखों में फिल्म से लिया था जिसमें म्यूजिक था शंकर जयकिशन का। और आज ऐसे ही और भी बहुत सारे गाने सुनवाने वाली हूँ प्रोग्राम के अगले हिस्से में, क्योंकि आज हमारे बॉलीवुड के एक बहुत ही अच्छे दिल वाले एक्टर जिनके बारे में सभी सिर्फ अच्छी और सिर्फ अच्छी बातें करते हैं, उनका नाम है सुनील दत्त। आज सुनील दत्त की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए आज की यादें में हम उन्हें याद करेंगे, उनके बारे में कुछ बातें करेंगे और उनकी फिल्मों के गाने भी सुनवाऊंगी। याद रखिए प्रोग्राम के अगले हिस्से में। और आगे बढ़ने से पहले सुखी आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, हिमा थैंक यू फॉर योर मैसेज, थैंक यू निर्मला जी, प्रदीप सोलंकी जी एंड थैंक यू जैस जी एंड थैंक यू प्रीति जी, बेल्जियम में हमारा साथ दे रही हैं एंड संध्या भाव सर ऑफ कोर्स। चलिए अगला फिर से एक और रोमांटिक गाना मेरी ओर से आप सबके लिए।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store.
2: ये है
3: Like a Gold.
2: Ritu Sharma live on Like a Gold, Greater London.

0: Nearly 160,000 Allied troops landed on the 6th of June 1944 to fight Nazi-occupied France. Veterans and officials from the UK, France and the US are expected to be part of the service of remembrance. Australian police say a man has died after being attacked by a shark while he was fishing off the country's southwestern coast. It's the third shark attack in 3 weeks there. And Ferrari boss Fred Vasseur will miss today's qualifying session at the Monaco Grand Prix after he was taken to hospital. The 58-year-old will be remaining under observation at a local medical facility. From Sky News, that's the latest.
1: This is Leica Radio Network, officially London's number one Asian commercial radio group.
2: Need anything from Tesco? Maybe some Parmahan, the proper one from here in northern Italy, that's been hand-salted using expert techniques, then dry-cured for 20 months for a more intense, distinctive flavour.
3: We visit the world-famous Emilia-Romagna region of Italy for our finest Parmahan, included in our three for £8 deli deal with your Tesco Club card. The quality you need around the corner, because every little helps. Selected larger stores, club card or app required.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
4: गुड मॉर्निंग, आइए बात करते हैं आज के मौसम की। और आज एक बार फिर से मौसम गीला गीला भीगा भीगा है। लंदन में आज हल्की बारिश होगी, मैक्सिमम टेम्परेचर 17 डिग्रीज तक रहेगा। मैनचेस्टर में भी हल्की बारिश होने की संभावना है, मैक्सिमम टेम्परेचर 19 डिग्रीज एंड मिडलैंड्स में टेम्परेचर रहेगा आज 17 डिग्रीज के आसपास।
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
5: ये है Leica Gold.
1: Ritu Sharma.
4: जी हाँ बिल्कुल, आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो और मैं हूँ ऋतु शर्मा और यह है प्रोग्राम का सेकेंड आवर जिसमें होती है यादें। और आज की यादें में हम बात करने वाले हैं सुनील दत्त की, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। पहले तो गाने उनकी फिल्मों से बैक टू बैक।
1: लाइक अ गोल्ड, लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स बैक टू बैक। स्पॉन्सर्ड बाय travelhubworld.com फॉर द बेस्ट सर्विस एंड अनबीटेबल प्राइसेस, विजिट travelhubworld.com। travelhubworld.com,
6: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता।
7: ट्रैवल हब,
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Leica, feel good classics non-stop with Ritu Sharma. This is Leica Gold.

0: शमशाद बेगम मोहम्मद रफी साहब की आवाज में मदर इंडिया फिल्म से था ये गाना, और उससे पहले महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म का गाना। और दोनों ही फिल्में सुनील दत्त के करियर की सुपरहिट फिल्म्स हैं, और आज हम सुनील दत्त को ही यादें में याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। आज ही के दिन यानी कि 6 जून 1929 में सुनील दत्त जन्मे थे, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक दिग्गज अभिनेता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक सम्मानित पॉलिटिशियन थे। उन्होंने अपनी अदाकारी और अपने किरदारों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी, और इसीलिए देखिए इतने सालों बाद आज भी उन्हें पसंद किया जाता है और उनके गीतों को बड़े ही प्यार से सुना जाता है। बचपन में भारत का जब बंटवारा हुआ था उस दौरान उनका परिवार भारत आ गया था, और उन्होंने शुरुआत में बहुत ही तंगी के दिन गुजारे, यानी कि बचपन बहुत ही तंगी में बीता, सब कुछ छोड़कर आना पड़ा था। उन्होंने मुंबई से पढ़ाई की और अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए उस ज़माने की जो बॉम्बे बेस्ट बसेस थी उसमें डिपो के क्लार्क के रूप में भी काम किया। लेकिन फिल्मों में आने से पहले रेडियो सीलोन, जो अपने ज़माने का जाना माना रेडियो स्टेशन रहा, वहाँ पर वो एक बहुत ही पॉपुलर आरजे या रेडियो प्रेजेंटर भी थे, और जहाँ पर वो फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लिया करते थे। और जानते हैं एक बार उनकी मुलाकात वहाँ नरगिस जी से भी हुई थी, लेकिन वो किस्सा बाद में बताऊँगी। बट फिलहाल आपको बता दूँ कि रेलवे प्लेटफॉर्म उनकी सबसे पहली फिल्म थी जिससे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन असल पहचान उन्हें मदर इंडिया से मिली, जिसका गीत अभी आपने सुना, जिसमें उन्होंने बिरजू नाम के एक गुस्सैल यंग लड़के का किरदार निभाया था, और ये कैरेक्टर उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और मदर इंडिया के बाद तो उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, और आज ऐसी ही उनकी ही कुछ फिल्मों के गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ। इनफैक्ट अगला गीत जो शायद आपने काफ़ी दिन से नहीं सुना होगा, सुनवाती हूँ आपको मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको बता दें कि 1 pound के बदले में आज आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफ़र आपको करवाना होगा वाया SBI ब्रांच ऑनलाइन और उनके योनो ऐप के थ्रू। लेकिन उसके अलावा बिफोर एंड ऑफ जून एंड बी इनटू विन 75 pounds वाउचर एवरी डे व्हेन यू सेंड ओवर 1000 pounds एंड ऑल्सो अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2000 pounds। टर्म्स एंड कंडीशंस डू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: This is Like a Gold.

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में फिल्म बेटा बेटी से लिया था ये गाना, जिसमें शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था और इस तरह की अनेकों फिल्मों का हिस्सा रहे थे सुनील दत्त, जिनके की गीत आज सुनवा रही हूँ, जिन्हें याद कर रहे हैं हम यादें में, क्योंकि आज है उनकी बर्थ एनिवर्सरी।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: इनके हिस्से में बहुत सारी सुपरहिट कहूँ या क्लासिक्स फिल्म्स हैं जिन्हें आपने देखा होगा, साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, गुमराह, वक्त, पड़ोसन, हमराज। लेकिन एक और ऐसी फिल्म सुनील दत्त ने बनाई थी 1964 में, जिसका नाम था यादें, और इस फिल्म के कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि इस फिल्म की एक खास बात थी कि पूरी फिल्म में केवल एक ही एक्टर यानी कि खुद सुनील दत्त थे, और एंड में सिर्फ कुछ सेकंड्स या मिनट्स के लिए नरगिस दत्त आई थी जो इनकी पत्नी थी, वरना पूरी फिल्म में सिर्फ अकेले सुनील दत्त थे। और ऐसी ये एक अनोखी फिल्म थी और जिसके कारण इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और रोमांटिक सा गीत सुनवाते हैं इन्हीं की फिल्म से, जिसे आप सब सुनना चाहते हैं।
1: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म जिसकी कहानी जिसके गाने एक से बढ़कर एक, और आज सुनील दत्त की बात हो और इस फिल्म का गीत ना बजे ऐसा हो नहीं सकता। इस गाने को आप सबने इंजॉय किया है और आज ऐसे ही गाने ऐसी ही बातें कुछ बताने वाली हूँ सुनील दत्त के बारे में। इनफैक्ट मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ किस्सा। आपको याद होगा उनकी एक फिल्म आई थी मुझे जीने दो, जिसमें सुनील दत्त के साथ वहीदा रहमान भी थी, और ये जो फिल्म थी डाकुओं के जीवन पर आधारित थी और सुनील दत्त चाहते थे कि फिल्म पूरी तरह से असली लगे, इसलिए उन्होंने सेट लगाने की बजाय सीधे मध्य प्रदेश के चंबल के बीहड़ों में जाकर शूटिंग करने का फैसला किया। जानते हैं उस दौर में चंबल में मोहर सिंह, माधो सिंह जैसे खूंखार डाकुओं का राज था जिनसे पुलिस भी डरा करती थी। और एक रात जब शूटिंग चल रही थी क्या हुआ, जब एक रात सुनील दत्त अपनी पूरी यूनिट जिसमें वहीदा रहमान भी उनके साथ थी के साथ चंबल में एक गांव में ठहरे हुए थे, तो आधी रात को बंदूकों से लैस डाकुओं के गिरोह ने पूरे कैंप को घेर लिया। अब पूरी यूनिट डर के मारे कांपने लगी और सबको लगा कि अब तो बचना नामुमकिन है। लेकिन

0: और उनके जीवन और उनके संघर्ष को पर्दे पर सच के साथ दिखाने आए हैं। और उन्होंने उन डाकुओं को इस बात का आश्वासन भी दिया कि फिल्म के जरिए वो दुनिया को बताएंगे कि कोई भी इंसान जन्म से डाकू नहीं बनता, बल्कि उसके हालात उसे ऐसा बनाते हैं। डाकुओं के सरदार ने उनकी बात सुनी, उन्हें मानी और न सिर्फ उन्हें शूटिंग करने से रोका, बल्कि उन्हें वादा किया कि जब तक उनकी फिल्म की शूटिंग चंबल में चलती रहेगी, तब तक उनका पूरा गिरोह उनकी यूनिट की और उनकी सुरक्षा करता रहेगा, पहरेदारी करता रहेगा। और फिल्म जब याद है, जानते हैं, मुझे जीने दो बनकर तैयार हुई, तो सुनील दत्त ने एमपी गवर्नमेंट से विशेष परमिशन लेकर ग्वालियर की जेल में बंद जो कैदी थे या फिर जो सरेंडर कर चुके डाकू थे, उनको दिखाने के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग भी कराई थी। क्या बात है। चलिए, अब इस फिल्म का गीत तो नहीं, लेकिन एक और बहुत सुंदर गीत सुनवाने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दे।
1: रिचि शर्मा ऑन लाइक ए गर्ल।
2: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच, मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा।
0: चलिए आपको बता दें कि अगर आप किशोर कुमार के फैन हैं तो आप जा सकते हैं क्रेजी फॉर किशोर शो को देखने के लिए। एक स्पेशल म्यूजिकल नाइट है फीचरिंग जॉय, इंद्राणी, संजय विद हेनल एंड 515 बैंड, और ये सब होने जा रहा है फ्राइडे 19 जून को एट द प्रिंस रीजेंट होटल चिगवेल एसेक्स में। टिकट्स अवेलेबल है एट eventbrite.co.uk पर, या फिर उन्हें कॉल कीजिए ऑन 0208-514-5400 पर, और आपको बता दें कि लाइका गोल्ड इस प्रोग्राम के एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स हैं।
1: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
0: और अगला गीत सुनवाने से पहले आपको ये भी बता दें कि नया एपिसोड आ चुका है लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का। उसका टाइटल है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे होस्ट किया है रेडियो वाली ने। आप लाइका एक्स्ट्रा सुन सकते हैं यूट्यूब, अमेजन, एप्पल और स्पॉटिफाई पर जाकर।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: दिस सैटरडे द 12 मिलियन पाउंड लॉटो जैकपॉट must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
7: Must be won.
3: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
1: Like a goat.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
8: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
8: विजिट travelhubworld.com।
9: राम कृष्ण हरी। यूके तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जूनला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।

0: रफी साहब की आवाज में एक और बहुत ही सुंदर सा गाना जो पिक्चराइज किया गया था नंदा और सुनील दत्त पर। और आज हम सुनील दत्त को यादें में याद कर रहे हैं, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी है। और जो सुनील दत्त को जानते हैं वो उनके बारे में सिर्फ यही कहते हैं कि वो सिर्फ पर्दे के ही नहीं बल्कि असल जीवन के भी हीरो थे। एक बहुत ही संवेदनशील और देशभक्त इंसान थे। आपको बता दें कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, उन्होंने इलेक्शंस लड़े थे और वो सांसद भी रहे थे। 5 बार उन्होंने सांसद का चुनाव जीता था। और 2004 में जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने उन्हें युवा मामले और खेल मंत्री उन्हें बनाया गया था। उन्होंने 1987 में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था तब उन्होंने मुंबई से अमृतसर यानी स्वर्ण मंदिर तक करीब 2000 किलोमीटर की महाशांति पदयात्रा की थी, जिसका उद्देश्य देश में अमन और भाईचारा कायम करना था। और अपनी पत्नी नरगिस जी की कैंसर से मृत्यु के बाद उन्होंने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और कैंसर मरीजों के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। उनके इस काम के लिए, उनके सहयोग के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और फिर उन्हें 1995 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा उन्होंने बहुत बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। फिल्म मुझे जीने दो जो डाकुओं पर फिल्म थी और खानदान जिसके कि गीत कमाल के हैं, आज शायद बजा पाऊँ देखती हूँ, उसके लिए भी उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और 25 मई यानी कि लास्ट मंथ हार्ट अटैक होने से उनका देहांत हो गया था। लेकिन आज हम उन्हें यादें में याद कर रहे हैं, आज उनका जन्म दिवस, आज के दिन बॉर्न हुए थे। एक और खूबसूरत सा गीत आने वाला है आपसे बस थोड़ी ही देर में।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 pound आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टकास।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 104.7 pounds per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
3: Ye hai Leica
2: Gold.
4: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
5: No more worries for me or you.
6: Southall Travel, at all protected.
7: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
8: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
7: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
8: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
7: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
8: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
7: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
9: Step into the new grand showroom of Gajul's Couture, Southall. at 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
10: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
9: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Kajal's Couture, now open 7 days a week.
10: Kajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
11: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our रेडियो।
12: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24 Our line.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मां भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मां दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मां जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो। डिपार्चर 5 सितंबर ना। मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-6333। मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा।
14: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
15: This is huge.
14: Tariq Halal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
15: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
14: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
15: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
14: Tariq Halal, Rainer's Lane. There is only one.
16: London's biggest Asian wedding fest and bridal fashion show, KMB with Shanila, brings you stunning bridal collections from leading Afghan, Bangladeshi, Indian, Pakistani and Middle Eastern designers. Showcase live on the runway, featuring special guest actress Kubra Khan and a spectacular Qawwali night with Ahmed Shah and group. 12th June at the Willows from 1 p.m. till late. Get your tickets on Eventbrite or call 07989972
17: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma on Like a Gold, Greater London.

इस फिल्म के लिए सुनील दत्त साहब को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला था, और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत काम किया। और हमारे एक साथी जानना चाहते हैं कि आपने नरगिस दत्त के इंटरव्यू वाला किस्सा नहीं सुनाया। हाँ, क्योंकि समय कम था, लेकिन आप जानना चाहते हैं तो मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में वो किस्सा, इंटरेस्टिंग किस्सा जरूर सुनवाऊंगी। लेकिन फिलहाल तो एक और गाना बजाने वाली हूँ जो उनकी ही सुपरहिट फिल्म से लिया है, और ये गाना हमें लेकर चलेगा न्यूज तक। मिलेंगे आपसे न्यूज के उस पार, एंड प्रॉमिस वो किस्सा जरूर सुनवाऊंगी। This is Leica.

0: आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में वक्त फिल्म से था ये गाना, जिसमें सुनील दत्त हीरो थे और उससे पहले काला पत्थर फिल्म का गीत मैंने आपको सुनवाया। आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद रेडियो, ये है प्रोग्राम का लास्ट एंड फाइनल आवर और इस आवर में हम खेलते हैं थ्री वर्ड्स गेम और बजाती हूँ मैं आपके लिए कुछ ब्लैक एंड वाइट क्लासिक्स भी। लेकिन उससे पहले ज़रूर वो किस्सा सुनाऊंगी जिसके बारे में कुछ साथियों ने कहा है कि आपने कहा था और बताया नहीं क्योंकि समय नहीं था। तो ज़रूर बताती हूँ कि आज यादें में हमने सुनील दत्त को याद किया है, आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी। और मैंने ये भी बताया कि सुनील दत्त फिल्मों में आने से पहले एक रेडियो जॉकी थे, रेडियो प्रेजेंटर थे और उनका शो था जिसमें वो उस ज़माने की मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लिया करते थे। और सुनील दत्त नरगिस जी के बहुत बड़े फ़ैन थे और जब एक बार उन्हें पता चला कि नरगिस जी का उन्हें इंटरव्यू लेना है, क्योंकि नरगिस जी उस समय बहुत बड़ी स्टार थी, और सुनील दत्त को जब पता चला कि उनका इंटरव्यू लेना है तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए और उतने ही ज़्यादा घबराए हुए भी थे क्योंकि नरगिस उनकी फेवरेट एक्ट्रेस थी और उन्होंने उनके इंटरव्यू के लिए बहुत तैयारी की थी, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए थे कि जब वो आएंगी तो मैं ये पहनूंगा, ये पूछूंगा, ऐसे स्माइल करूंगा, ये सब तैयारी। लेकिन जैसे ही नरगिस जी स्टूडियो में आई, सुनील दत्त के सामने बैठी, सुनील दत्त उन्हें देखकर सब कुछ भूल गए। उनकी खूबसूरती और उनके स्टारडम का सुनील दत्त पर ऐसा असर हुआ कि जो इंसान अपनी शानदार आवाज़ और बेबाक बातचीत के लिए जाना जाता था उसकी बोलती बंद हो गई। सुनील दत्त को नरगिस जी से सवाल पूछने थे लेकिन घबराहट के मारे उनका मुंह तो जैसे जम गया था, उनके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो बार बार अपनी स्क्रिप्ट देखते लेकिन जैसे ही नरगिस जी की तरफ देखते सवाल भूल जाते। कुछ देर तक तो नरगिस जी बैठी रही, उन्होंने सोचा कि शायद थोड़ा माहौल ठीक होगा, शायद ये मुझसे कुछ सवाल पूछेंगे। लेकिन सुनील दत्त एक भी सवाल नहीं पूछ पाए और आखिरकार उस इंटरव्यू को कैंसिल करना पड़ा। कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान में बनती है, लेकिन इस नाकाम इंटरव्यू के बाद उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि जिसके सामने उनकी बोलती बंद हो गई थी उन्हीं से उन्हें शादी रचाने का मौका मिलेगा। मदर इंडिया में दोनों ने साथ में काम किया और सेट पर आग लगी। हम जानते हैं सुनील दत्त ने अपनी जान की परवाह किए बिना नरगिस जी को आग से बाहर निकाला, काफ़ी जल भी गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों ने शादी रचाई और बहुत ही प्यार से अपना जीवन बिताया। हालांकि उनके बाद का जीवन काफ़ी दुखों से भरा रहा जिसके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, पर अब समय नहीं है, किसी और दिन उस बारे में बात करूंगी। क्योंकि फ़िलहाल मुझे आपको बताने हमारे आज के थ्री वर्ड्स, इस आवर में हम थ्री वर्ड्स गेम खेलते हैं, तो आप सब तैयार हैं? और जो पहली बार प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनको बता दूँ कि मैं ऋतु शर्मा, और थ्री वर्ड्स में क्या होता है, थ्री वर्ड्स में हम एक बॉलीवुड के किसी गाने से पहली तीन चार लाइन से तीन वर्ड्स पिक करते हैं और आपको उनसे उनकी हेल्प से पहचानना होता है कि गाना कौन सा है। तो मैं बताती हूँ आज के जो वर्ड है उनमें पहला वर्ड है रोशनी, अरे हमारी लिस्टनर नहीं, वर्ड है रोशनी। दूसरा वर्ड है प्यार और तीसरा है झूमती। मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, 1967 की फिल्म है और शंकर जयकिशन का म्यूजिक है। सोचिए बताइए कौन सा है ये गाना, रोशनी, प्यार, झूमती। 1967 की फिल्म है, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ें, शंकर जय किशन का म्यूजिक। अगर पता है तो अपना मैसेज भिजवाइए हमारे इस नंबर पर।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो आपको हम याद दिला दें कि आप भारत पैसा भिजवाना चाहते हैं तो 1 पाउंड के बदले में आज आपको मिलेंगे 126.5 भारतीय रुपए, और ये ट्रांसफ़र हमेशा की तरह आपको ब्रांच में जाकर उनके ऐप के थ्रू या फिर ऑनलाइन करवाना होगा। लेकिन अगर आप 75 पाउंड का वाउचर जीतना चाहते हैं तो आपको 1000 पाउंड से ज़्यादा ट्रांसफ़र करना होगा, और अगर आप 1 ग्राम गोल्ड कॉइन एवरी वीक जीतना चाहते हैं जब आप ट्रांसफ़र करते हैं ओवर 2000 पाउंड्स। टर्म्स एंड कंडीशंस टू अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Ye hai Laika Gold. 10:35 AM.
8: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
9: TravelHub, best service with unbeatable price.
10: At all protected.
9: Visit TravelHubWorld.com.
11: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
12: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
11: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
12: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
11: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
12: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
11: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
13: Ram Krishna Hari. UK, feel the power of Maharashtra. This 6th June, experience Vadya Mahotsav 2026 live at Royal Windsor Racecourse, SL4 5JJ, 100 Dol, 80 Tasha, Parampara, Sanskruti aur full-on Josh ka mega celebration. Bharat se UK tak, ek hi rhythm, ek hi pride. Tickets live now at svrtuk.org. Laika listeners get exclusive discount. Use code LAIKA10. Vadya Mahotsav 2026. Feel the beat, live the legacy.
1: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
14: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
1: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women.
14: Plus beautiful jewellery and accessories. Find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
1: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear. All in one destination.
15: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
16: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
15: ये तो बताओ, कोई पता चला?
16: गुरु गुरु,
17: इस 19 जून को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून.
15: तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
17: शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन 19 जून. टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
13: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड.
18: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
19: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
18: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
19: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
18: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
20: Location, location, location.
21: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
20: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
21: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
20: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
21: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
20: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
21: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
20: high appreciation
21: in Dubai.
22: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
23: Mango season has arrived. You're also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
22: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
24: Be part of a historic grand opening.
25: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
26: Travel with your family.
0: family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
25: Departure 5th of September. Call now on 0203-773-633.
0: Mantra Holidays. What's your travel mantra?
3: Like a Gold. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGold.com.
4: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: इंदीवर का लिखा हुआ ये गाना किशोर दा की आवाज में फिल्म कलाकार से लिया था। और अमित कहते हैं कि उन्हें फीमेल वर्जन पसंद है, या फीमेल वर्जन को साधना सरगम ने गाया है, वो भी बहुत सुंदर गाना है, किसी और दिन आपको सुनवाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि इंदीवर जो उनका पेन नेम था, लेकिन असल नाम श्याम लाल बाबू राय, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे, हमारे इस बार के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं। और उनके गाने प्रोग्राम में आपको सुनने को मिलते ही रहेंगे हर शो में।
1: ये है लाइका गोल्ड।
0: तो चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपको तीन वर्ड्स बता दें, हमारे कुछ साथी कहते हैं कि एक बार रिपीट कर दीजिए। तो चलिए, पहला वर्ड है रोशनी, दूसरा वर्ड है प्यार और तीसरा वर्ड है झूमती। रफ़ी आशा जी की आवाज़ें हैं, 1967 की फिल्म है ये और शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दे दिया है और आप भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का सिलसिला, सुनवाते हैं आपको पहला गाना।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: का पहला गाना फिल्म सहेली से लिया था, जिसमें लता जी और हेमंत कुमार की आवाजें थी। तो चलिए सुनवाते हैं आपको आज के ब्लैक एंड व्हाइट क्लासिक का दूसरा गाना।
1: दिस इज ऋतु शर्मा।
2: दिस सुपर हिट ट्रैक इज ब्रॉट टू यू बाय टिल्डा बासमती राइस। विद अ रेंज ऑफ ग्रेन्स एंड फ्लेवर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन मेक एवरी मील मेमोरेबल।

ये थी आवाजें मन्ना डे और लता मंगेशकर की। अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म चोरी चोरी से लिया था आज के ब्लैक एंड वाइट क्लासिक का दूसरा गाना। और हमारी फरीदा जी कहती हैं कि ये दोनों गाने ऋतु मेरे नाम कर दो। लीजिए, मैंने आपके नाम पर किए और उन सभी के नाम पर किए जो इस तरह के गीतों को सुनना पसंद करते हैं। और अब बात कर लेते हैं आज के थ्री वर्ड्स गेम की। बहुत सारे साथियों ने सही जवाब दिया है।

0: और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनमें सबसे पहले नाम है अजाज जी आपका चैशम से, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उल्लास टोरंटो से सही बताया है आपने। विजय गुडूरी जी और आंसर इज करेक्ट। नरेन पटेल, भरत गंगा राम जी, रजनीश गुरुशरण, कर्सन पिंडोरिया जी, गिरीश जी, नीलकंठ वॉकिंगम से, विद्युत जी, सहर जी, हाजरा जी, मितुल पटेल एंड शुमिला मंगर, आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। और जासू जी कहती हैं मेरा पसंद का गीत है मेरे भी नाम करो, चलिए हमने आपके भी नाम किया। एंड मितुल पटेल आप एक गीत सुनना चाहते हैं और आज प्रोग्राम में इतनी जगह नहीं है कि वो गाना शामिल कर सकूं, लेकिन आई प्रॉमिस आप मुझे याद दिला दीजिएगा, आने वाले शोज में आपकी पसंद का गीत ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जब भी कोई किसी गाने की रिक्वेस्ट करता है तो वो रहता है मेरे दिमाग में और मैं कोशिश करती हूँ कि जल्द से जल्द उसे अपनी प्लेलिस्ट में शामिल करके आपको सुनवा दूँ और काम ख़त्म कर दूँ। एनीवेज तो चलिए, सबने सही आज के थ्री वर्स गेम को पहचान लिया है, तो देर किस बात की है, सुनाते हैं आपको वही गाना अब से बस थोड़ी ही देर में।
1: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: लेकिन उससे पहले याद दिला दें कि भाई हॉलीडे जाना चाहते हैं, समर टाइम है, तो याद रखिए साउथहॉल ट्रैवल को। 40 सालों से आपकी सेवा कर रहे हैं और ब्रिटिश ट्रैवल अवार्ड भी जीत चुके हैं। विजिट कीजिए साउथहॉल ट्रैवल को, उन्हें कॉल कीजिए 0208-574-8410 पर और अपनी हॉलीडे डील्स बुक कराइए। दैट्स इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड एवरीथिंग एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Ye hai.
8: Like a gold.
9: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
10: TravelHub, best service with unbeatable price.
11: At all protected.
10: Visit TravelHubWorld.com.
12: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
13: Atif Aslam live in the UK.
12: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
13: Book your tickets now at AXS.
12: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio.
14: Are we there yet?
15: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
16: Relax, I've booked the Uber already.
15: But how? My roaming isn't even working yet.
16: I switched to Simzy before we left London.
15: Simzy? Since when are you the tech expert?
16: Since I decided I want a stress-free holiday.
17: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
18: T's and C's apply.
19: Location, location, location.
20: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
19: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
20: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
19: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
20: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
19: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
20: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
19: High appreciation.
20: In Dubai.
21: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu Ayurved, that fits your life.
3: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
4: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
5: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
6: This is huge.
5: Thadi Kalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
6: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
5: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
6: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
5: Thadi Kalal, Rainer's Lane. There is only one.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
7: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: एन इवनिंग इन पेरिस, मोहम्मद रफी साहब और आशा जी की आवाज़ों में ये गाना था हमारे आज के थ्री वर्ड्स गेम वाला गाना, जिसे ज्यादातर सभी साथियों ने बिल्कुल सही सही पहचान लिया है।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, क्विक टेस्टी हेल्दी फ्लेवर्स, परफेक्ट फॉर माय बिजी डे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: तो आज 1 पाउंड आपको देगा 126 भारतीय रुपए, 371 पाकिस्तानी रुपए एंड 163 बांग्लादेशी टका।
2: Leica Radio.
3: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Leica Gold, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So Gold Rate is 104.7 pounds per gram.
3: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley. This is Leica Gold.
0: जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, ये है लाइका गोल्ड और अब मेरा समय हो गया है आपसे बाय कहने का। अगला गीत हमें लेकर चलेगा न्यूज़ तक और न्यूज़ के उस पार लाइका गोल्ड पर अनुराग होंगे आपके साथ, लाइका रेडियो मैनचेस्टर पर फजीला होंगी आपके साथ एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर अनिका आपके साथ होंगी। लेकिन आपको याद दिला दूं कि अगर इस शो को आप दोबारा सुनना चाहते हैं तो लिसन बैक पर जाकर इस शो को दोबारा सुन सकते हैं, और अगर आप नॉनस्टॉप क्लासिक सुनना चाहते हैं तो लाइका गोल्ड है आपके लिए, ऑनलाइन सुन सकते हैं। 90s के गीत को भी आप लाइका रेडियो ऑनलाइन 90s पर सुन सकते हैं, और पंजाबी गीतों के लिए भी है लाइका रेडियो पंजाबी ऑनलाइन। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मर्जी सुनिए, इंजॉय कीजिए, मौसम भी अच्छा है, और बस मुझे कह दीजिए बाय। कल होगी आपसे फिर से मुलाकात, लेकिन जाते आते आप सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस भिजवाए और शो में मेरा साथ दिया। ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं कल आपसे फिर से। टेक केयर, बाय बाय, सी यू टुमारो।
4: हे देयर, मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट। कैच मी ऑन माय शो गोल्ड आफ्टरनून्स विद ट्रिब्यूट्स, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने ऑन लाइका गोल्ड एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स फ्रॉम 1 PM टू 4 PM।
2: ये है
5: लाइका गोल्ड। Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
6: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
7: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
6: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
7: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
6: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
7: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
6: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
8: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
9: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save, Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
10: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways, and food delivery services.
11: services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
12: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Eurochange and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
13: Experience the ultimate escape, 25 unforgettable days across Australia, breathtaking New Zealand and paradise in Fiji. Two departures, November and February. It's the holiday of a lifetime. First 10 bookings get 300 off. Visit sonatours.co.uk or call 0208 951 0111.
14: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
15: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
14: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
15: गारंटेड।
14: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
15: फोन 0208574 8410।
14: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
16: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
3: Up next, Golden Rug with Unrug on Like a Gold. Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.

0: सजना की पॉकेट पर भारी पड़ता हुआ गाना पप्पी लहरी साहब का शानदार संगीत शराबी फिल्म का ये गाना भी आप सुन रहे थे। और इसी के साथ आप सभी के प्यारे प्यारे संदेशों को बहुत बहुत शुक्रिया, रितु शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इससे पहले थी हॉट सीट पर। आप सुन रहे हैं सुरु से सजी गोल्डन राग वाली वीकेंड वाली पाठशाला। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। शराबी फिल्म का गाना हमने आपको सुनाया। इस फिल्म में आपको याद होगा बच्चन साहब सूट बूट में और एक हाथ उनकी पॉकेट में। पैंट की जेब में हाथ रखने का राज क्या है? राज ये है कि भाई फिल्म की रिलीज से पहले जब उसकी शूटिंग हुआ करती थी, चला करती थी, उससे पहले दिवाली का पर्व आया और उस वक्त एक हादसे के चलते बच्चन साहब का हाथ जख्मी हो गया, जल गया, काफ़ी बुरी तरह से जल गया, जिसे जिसके साथ काम करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन बच्चन साहब कमिटेड अपने फिल्म, अपने करियर को लेकर और अपने फैंस के जज्बातों को लेकर फिल्म टाइम पर पूरी होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने उस अपने जले हुए हाथ को रखा अपनी पॉकेट के अंदर, जो कि बाद में बन गया क्या, स्टाइल स्टेटमेंट। बच्चन साहब कुछ भी करें, देव साहब कुछ भी करें, वो एक स्टाइल स्टेटमेंट बन जाया करता था। और इस फिल्म का को बनाने का, शराबी फिल्म के को बनाने का आइडिया भी भाई ज़मीन पर नहीं आया था। प्रकाश मेहरा साहब न्यूयॉर्क से वेस्ट इंडीज़ की एक फ़्लाइट के दौरान जब बच्चन साहब के साथ इस फिल्म को पर विचार कर रहे थे, जब डिस्कस कर रहे थे, तब इस शराबी फिल्म का आइडिया उनके साथ निकल कर आया। बप्पी लहरी साहब का खूब गजब का संगीत रहा। इंतहा हो गई, इंतज़ार की, दे दे प्यार दे, और जो अभी आपने गाना सुना उस दौर में चट बस्टर्स साबित हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला गाना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो गई शराबी के बारे में, शराबी फिल्म के बारे में। वैसे आज मौसम है आँखों से पीने पिलाने का और जाम टकराने का। अगला गाना रफी साहब और आशा दाई की आवाज़ में, थिरकने के लिए हो जाइए तैयार।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.50। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Yeah, like a gold.
8: Like a gold.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Step into the new grand showroom of Gajal's Couture, Southall.
12: At 159 The Broadway, Southall, UB1 1LR.
11: From stunning bridal wear and glamorous party wear to stylish casual outfits for men and women,
12: plus beautiful jewellery and accessories, find everything under one roof. Gajal's Couture, now open 7 days a week.
11: Gajal's Couture, Southall. Style, elegance and occasion wear, all in one destination.
13: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
14: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
13: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
14: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Daniel. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For five generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
15: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
16: Wherever you want to go for the holiday of a lifetime or a trip to visit loved ones, call Southall Travel 24 hours a day for total peace of mind. A fast, reliable service and a money-back guarantee. Call them today on 0208 574 8410. That's 0208 574 8410 and very soon you could be on your way. Southall Travel, the specialists for any airline, anywhere, anytime. 0208 574 8410.
17: No more worries for me or you.
18: Southall Travel, at all protected.
19: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें, हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है. कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन, असाइलम केसेस, अपील्स, स्किल्ड वर्कर वीजा, स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं. अभी कॉल करें 02089072444. दैट्स 02089072444.
20: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
21: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
20: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
21: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
20: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
21: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
22: 8 days to go. Get ready to sing along with Atif Aslam live at the O2 on the 14th of June. Tickets available at AXS. Exclusive radio partnership, Leica Radio.
23: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
24: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
25: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: दो।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Bhai parda bhi hatega, kohra bhi chhatega aur suru ka karwa aage bhi badhega. Kishore Da ki awaaz mein agla gana bada hi pasand aane wala hai aapko. खास तौर पर आज जो बाहर हैं और लाइका नेटवर्क के साथ हैं उनके लिए गाना सुनते रहें गोल्डन राग संग वीकेंड वाली पाठशाला
1: ऑन राग विद गोल्डन राग।

0: जाने कब कहां किसी को प्यार मिल जाए, समझ लीजिए जैकपॉट लग जाए। जूली फिल्म का ही गाना सुन रहे थे किशोरदा की खूबसूरत आवाज में। और अगला गाना हम सुनाने जा रहे हैं आपको, फिल्म का नाम है मिलन, और ये मिलन आपसे हम सुरों के जरिए कराएंगे, जिन्हें प्यार से हम सुनील दत्त साहब कहते हैं, साहब कहते हैं, और जिनका असली नाम बलराज रघुनाथ दत्त, जिनकी बर्थ एनिवर्सरी है आज 6 जून 1929 को उनका जन्म हुआ था। और कई सालों तक उन्होंने अपने अभिनय के टैलेंट से हम सबको एंटरटेन किया और कई नए कलाकारों को उन्होंने उनकी प्रतिभा को सबके सामने रखने में काफ़ी मदद की, इसीलिए उन्हें बड़ा ही प्यार दिया जाता था फिल्म इंडस्ट्री में। हालांकि मेरा जब करियर शुरू हुआ उससे 2 वर्ष पूर्व उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा और बॉलीवुड के आसमान पर एक सितारे की तरह चमकने लगे, लेकिन जब भी उनके बारे में सुना पुराने जर्नलिस्टों से, पुराने पत्रकारों से, यही सुना कि बड़े ही भले इंसान, स्क्रीन पर जितने अच्छे अदाकार उतने ही दरिया दिल वो निजी जिंदगी में भी। आगे बढ़ेंगे, अगला गाना उन्हीं की फिल्म मिलन से सुना रहे हैं, मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ में, बड़ा ही प्यारा गीत है।
1: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।

0: देखूं। कोई भी शब्द इतना मुकम्मल नहीं है कि रफ़ी साहब के गाए हुए इस गाने को अपनी तारीफों के लबादा पहना कर आपके सामने पेश कर पाए। बड़ा ही प्यारा गीत तीन देवियां फिल्म से सुन रहे थे और अगला गाना 90s के दिल को धड़काने के लिए, 90s के गानों को पसंद करने वालों के दिल को धड़काने के लिए, अलका याग्निक और सानुदा की आवाज में। लेकिन उससे पहले
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.79 पाकिस्तानी रुपीस 371.48 श्रीलंकन रुपीस 449 बांग्लादेशी टका 163.96 एंड 1 यूएस डॉलर 1.33.
1: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now.
2: सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Feel good classics all day. Like a gold.

0: बिल्कुल सही आया मौसम दोस्ती का। लता जी एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में ये गाना हम तक पहुंचाया है मैंने प्यार किया फिल्म से। आज की थीम जो कि है दोस्त और दुश्मन, मिथुन पटेल साहब, रानी और कैलाश जी ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ये पहला गाना हमने सुनाया आपको गोल्डन राग की तरफ से। फिल्म का नाम था नरसिम्हा, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। पहला गाना हमसे तुम दोस्ती कर लो। भाई बहुत हो गई दोस्ती, अब दुश्मनी की तरफ बढ़ेंगे। और अगला गाना किसने भेजा है आज की थीम को मद्देनजर रखते हुए, देखते हैं और सुनाते हैं आपको थोड़ी देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन एक ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.50। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच ऑनलाइन और योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
3: Must be won.
4: Must be won.
5: Must be won.
6: Must be won.
2: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
7: Yeah. Like our gold.
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथ।
9: सीरीन हॉलिडेज अपने पूर्व अफ्रीकाना स्थळोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दारिसलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो आणि रिलॅक्स થઈ જાઓ
9: કેમ કે આપની સફર અમારી સફર છે। વધુ માહિતી માટે
10: કોલ કરો દીપ્તિ પંડ્યાને
9: 0116266481 પર। વધુ માહિતી માટે લોગિન કરો serenehollidays.co.uk પર।
11: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
12: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
13: Atif Aslam live in the UK.
14: Dil diya galla karange na.
12: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
13: Book your tickets now at AXS.
12: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
13: Exclusive radio partner Leica Radio.
15: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
16: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
15: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
16: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
15: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
16: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
15: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
17: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
13: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
17: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
13: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
18: Location, location, location.
19: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
18: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
19: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
18: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
19: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
18: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
19: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
18: High appreciation.
19: In Dubai.
3: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
4: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
3: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
4: गारंटेड
3: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे।
5: साउथ हॉल ट्रेवल
4: 0208574 8410।
5: 2400 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574 8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
20: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
6: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
21: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए minarjewelers.com। कॉल 0208-767-7627।
22: Most mortgage brokers charge you a fee, but we don't charge you a penny, and we still put cash back in your pocket.
23: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
22: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
23: Call 0208-706-0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208-706-0915, or visit cashbackremortgages.co.uk.
22: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.
24: Laika Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LaikaGold.com.
25: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
26: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Gori chalo na hans ki chal, beti beta film ka ye gana hum tak pahunchaya tha Dinesh Popat ji, Shalini Pankaj aur Sumit Chaurasia ji ne. Bahut bahut shukriya. Ab charo ka hi agla gana aa raha hai jisko lekar sabse zyada log इस गाने को पसंद कर कर हम तक इसकी फरमाइश पहुंचा चुके हैं, क्योंकि आज की थीम को ये गाना बहुत ही अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, दोस्त और दुश्मन।
0: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
1: Lata ji aur Amit Kumar sahab aapki awazon mein aakhir क्यों फिल्म का ये गाना? लता जी और अमित कुमार साहब ने क्या अच्छी तरह से निभाया है ये गाना, हम तक पहुंचाया है फरीदा गुलाम अली जी, अंजलि जी, भरत गंगाराम जी, टोची बनेश्वर उल्लास जी, सरफून जगदीश, संतोष जी और हंसापुरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ,
1: लाइक अ रेडियो नेटवर्क हैज कंफर्म्ड अ पार्टनरशिप विद द प्रीमियम हॉस्पिटैलिटी ब्रांड रागास एंड डिटेल्स एट laikaradio.com.
2: Brought to you by South All Travel.
1: इस समर को आप भी बनाइए और ज्यादा स्पेशल यादगार ट्रेवल कीजिए साउथ ऑल ट्रेवल के साथ। एक्सप्लोर कीजिए बीच ब्रेक्स एंड सिटी स्केप्स एंड मोर विद हॉलीडे डील्स दैट इंक्लूड्स फ्लाइट्स, होटल्स एंड अटोल प्रोडक्शन, ट्रस्टेड फॉर ओवर 40 इयर्स एंड विनर्स ऑफ ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड। विजिट साउथ ऑल ट्रेवल और कॉल ऑन 0208574 8410.
2: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is Leica Gold. Leica Extra podcast update.
1: Leica Extra new episode podcast number 19 or hosted by Radio Wali. लिव इन रिलेशनशिप ये इस बार होगा मुद्दा। लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजॉन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म।
2: लाइक एक्स्ट्रा इज हियर, गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
3: दिस सैटरडे द 12 मिलियन पाउंड लॉटो जैकपॉट
4: must be won.
3: Yes, the lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
5: Leica Gold
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
7: TravelHub, best service with unbeatable price
8: at all protected.
7: Visit TravelHubWorld.com.

0: दोस्ताना फिल्म का बेहद ही शानदार नगमा रफ़ी साहब की आवाज़ में, और अय्यूब भाई आपको ये गाना हमने सुनाया, जो आपने कहा था वो नहीं सुनाया, लेकिन आई होप कि आपको ये गाना पसंद आया होगा। इसके अलावा प्रीति जी और एक अननोन शख्स जिन्होंने इस गाने की थी हमसे डिमांड आज की थीम को मद्देनज़र रखते हुए, अगला गाना बड़ा ही झिंगाट, झिंगाट समझते हैं ना आप, जिसको सुनने के बाद आपको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और अपने कदमों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उछलना कूदना पड़ेगा, थिरकना पड़ेगा, वो वाला गाना आने वाला है।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.67 पाकिस्तानी रुपीस 371.5, श्रीलंकन रुपीस 448.7, बांग्लादेशी टका 163.97 एंड 1 US डॉलर 1.33.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional 5,000 cash.
2: सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley. Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: दोस्तों से प्यार किया, शान फिल्म का ये गाना हम तक पहुंचाया था रागिनी जी और शर्मा जी, क्या रजत शर्मा जी ने, बहुत बहुत शुक्रिया इस गाने को हम तक पहुंचाने के लिए। अगला गाना किसने भेजा है उनका नाम लेंगे और गाना खुद अपना काम करेगा। हंसा बोरा जी, स्वीटी कालरा, अमिता जी, हरप्रीत जी और किरण फ्रॉम हैरो, अगला गाना आपके नाम क्योंकि उसे हम तक आप लोगों ने पहुंचाया है। मुकेश से आपकी आवाज़ या फिल्म का नाम है संगम बताई देते हैं और अगला घंटा गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस के साथ याद रखें।
1: लाइका गोल्ड
2: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
3: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाव एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
4: महाराजा टूर्स प्रेजेंट्स दिवाली धमाका 2026, 13 नाइट दिवाली और नवरात्रि क्रूज ऑन MSC वर्चुओसा, भजन जैमिंग, महफिल नाइट्स, रास गरबा, बॉलीवुड एंटरटेनमेंट और फुल ऑन मजा, स्पेन और पोर्चुगल के सनशाइन पोर्ट्स, फुल बोर्ड क्रूज और इंडियन खाना इंक्लूडेड फ्रॉम ओनली £1,179 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846।
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
8: अरे गुरु, आपके शो के टिकट ढूंढ रहा हूँ।
7: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश, क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
7: तो शुभकामनाएं, देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र।
9: Crazy for Kishore at the Prince Regent Hotel on 19th June. To book all, 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
11: Exclusive radio partner, Laika Gold.
12: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
13: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
12: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
13: And you didn't pay those massive roaming charges?
12: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
14: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
15: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
16: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
17: डिवोर्स या कस्टडी का इश्यू, इसे अकेले फेस मत करें। कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी एक्शन लेते हैं। अभी कॉल करें 0208-907-2444। आज ही एक्शन ले 0208-907-2444।
4: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ। आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे ज्यां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो। डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज। कॉल करो 0203-773-6333। Mantra Holidays. What's your travel mantra?
10: Attention meat lovers of Rainer's Lane.
18: This is huge.
10: Thadi Kalal is opening in Rainer's Lane on Wednesday the 17th of June. And you are all invited.
18: One day only. Spend just £1 and get up to £50 worth of top brand freebies.
10: But be quick. This golden giveaway is for the first 100 customers only.
18: Doors open at 10 a.m. sharp. 297 Rainer's Lane Pinner. HA55EH. Set your alarms, get there early and don't miss out.
10: Thadi Kalal, Rainer's Lane. There is only
19: बजट टाइट पर ब्रांड का इम्पैक्ट बड़ा चाहिए। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@laikaradio.com।
20: On rug with golden rug.

0: रंबा हो संबा हो अरमान फिल्म का एक खूबसूरत गाना उषा उत्सव जी की आवाज में सुन रहे थे। और अब आपको सुनने का वक्त आ चुका है, आपको सुनाने का बल्कि वक्त आ चुका है आज के गोल्डन रॉक के तीनों ऑप्शन जो कि हमने चुने हैं। सुनील दत्त साहब की फिल्मों से तीन गाने, क्योंकि आज उनकी बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर हम तीन उनके गाने आपको बताएंगे ऑप्शन के तौर पर। अब देखना यह है कि उनके फैंस के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, और वो ऑप्शन ये रहे। ऑप्शन ए है किसी पत्थर की मूरत से, फिल्म का नाम है हमराज। ऑप्शन बी है चलो एक बार हम अजनबी बन जाएं, गुमराह फिल्म का एक गाना है। ऑप्शन सी है मुकेश साहब की आवाज में फिल्म मिलन का ये गाना मैं तो दीवाना। कायदे कानून ये हैं इस खेल के कि हम आपको तीन ऑप्शन दे रहे हैं आज स्पेशली सुनील दत्त साहब की फिल्मों से जुड़े हुए, क्योंकि आज उनकी है बर्थ एनिवर्सरी। इन तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको पसंद करना है, उसे वोट की तरह कास्ट करना है हमारे स्टूडियो के नंबर पर, और जिस ऑप्शन को लेकर सबसे ज्यादा वोट हमें रिसीव होंगे वो गाना हमेशा की तरह बनेगा आज का गोल्डन राग। ऑप्शन ए एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सुनील दत्त साहब की फिल्म से जुड़ा हुआ। ऑप्शन ए किसी पत्थर की मूरत से, फिल्म का नाम है हमराज। ऑप्शन बी है चलो एक बार, फिल्म का नाम है गुमराह। और ऑप्शन सी है मैं तो दीवाना दीवाना, फिल्म का नाम है मिलन। वोटिंग लाइन हो चुकी है ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करना शुरू कर दें।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: अगर आप भी इंडिया में पैसे भेजना चाहते हैं तो आज के दिन ब्रिटिश पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे हैं 126.50। याद रखें आप अपने पैसों को वाया ब्रांच, ऑनलाइन और योनो SBI UK मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय-टू-लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई।
2: ये है लाइका गोल्ड।
3: Discover Portugal with a Lisbon and Madeira twin center escape. Fly from the UK, enjoy three night stays with breakfasts, connecting flight and more. Prices start from just £599 per person. For great deals on cruise and holidays, visit www.skylordcruise and holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash-in carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
8: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
9: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स योर travel mantra.

0: सुबह से लेकर शाम तक प्यार करो, लेकिन साथ साथ गोल्डन राग का भी इंतजार करो, वोट भी साथ साथ करते रहो भाई। मोहरा फिल्म का गाना उदित नारायण और साधना सरगम जी की आवाज में। इसी के साथ एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ आज के गोल्डन राग के तीनों ऑप्शंस। ऑप्शन ए है किसी पत्थर की मूरत से, फिल्म का नाम है हमराज। ऑप्शन बी है चलो एक बार अजनबी बन जाए, गुमराह फिल्म का ये गाना है। ऑप्शन सी है मैं तो दीवाना, फिल्म का नाम है मिलन। वोटिंग लाइन से ओपन, अपने अपने वोट कास्ट करते रहे।
1: दिस इज द लाइकर रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: On Rag with Golden Rag. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Soft and tender like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
4: Phoolon ka shabab usme phir

0: श्री 420 फिल्म का ये खूबसूरत गाना रमैया वस्ता भैया। और इसी के साथ आपको बताना है भैया कि गोल्डन राग अब चुना जा चुका है। आप लोगों ने जिस गाने को दिए हैं सबसे ज्यादा वोट, वो गाना है कौन सा, थोड़ी देर में आएगा आपके पास आपका गोल्डन राग।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: LemFi के जरिए 1 पाउंड के बदले इंडियन करेंसी में 126.67 पाकिस्तानी रुपीस 371.50 श्रीलंकन रुपीस 448.7 बांग्लादेशी टका 163.97 एंड 1 US डॉलर 1.33.
1: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
2: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ।

0: जी हाँ, ये एक वादा मेरा भी है कि थ्रू द नेक्स्ट 2.5 hours प्यारे वाले गाने बजते ही रहेंगे ऑन लाइक अ गोल. एंजॉय.
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Goodness in every bite. Try it today. Available in your nearest convenience store. Like a gold. Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: जी हाँ, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम भी नहीं जानते. फॉर अ लवली सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द मूवी कुदरत. नाउ दिस मूवी डिड नॉट रियली डू वेल, बट द सॉन्ग्स वर लाइक सुपर रोमांटिक. हेमा मालिनी एंड काका जी राजेश खन्ना. इस गाने का ना मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है. यू नो वो लाइन है जो तुम्हें कोई और देखे तो डरता है दिल, बड़ी मुश्किलों से भी संभलता है दिल. व्हाट अ लवली रोमांटिक लाइन. किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये लाइन परफेक्ट है.
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's the cinematic event of the year. Critics are saying a stunning, breathtaking triumph of savings. It's 2-for-1 cinema tickets from Compare the Market in cinemas all year.
3: That sounds like a great movie.
2: Sergey, it's no movie. It's 2-for-1 offer on cinema tickets.
3: Oh yeah, I knew that.
2: Get 2-for-1 cinema tickets every Tuesday or Wednesday with the Compare the Market app. The simplest way to save.
4: When you take out a qualifying product through Compare the Market, one membership per year, participating cinemas, 2 standard tickets only, cheapest free. T's and C's apply.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
5: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com.
6: TravelHub, best service with unbeatable price
7: at all protected.
6: Visit TravelHubWorld.com.
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर
9: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचीसन फॉल्स.
10: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
11: इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एंड दिस इज इंडियाज
12: लाइनअप. इस जून FIH हॉकी प्रो लीग लेकर आ रहा है स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी राइवलरी लंदन में. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान लाइव एट ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर. हाई स्पीड एक्शन, हाई इंटेंसिटी मोमेंट्स, बिल्कुल अनमिसेबल. अपने टिकट्स अभी बुक करें एट englandhockey.co.uk. India versus Pakistan, London, 23rd or 26th June. Be there.
11: So India looking to press home that advantage. There's a chance.
13: राम कृष्ण हरी. UK तैयार आहात ना ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला? येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ. 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या. महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाइव्ह बघायला नक्कीच आवडेल. थेट भारतापासून UK पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव. टिकेट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org. जय हरी विठ्ठल.
14: Packed for the trip? Gifts? Passport?
15: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
14: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
15: Simzy?
14: It's an eSIM app. You

0: I love this song. I mean, ये सॉन्ग किसको पसंद नहीं आएगा. किशोर दा एंड रफी साहब सिंगिंग वन सॉन्ग फ्रॉम द मूवी यादों की बारात. आई लव धर्म जी इन दिस मूवी, इट्स सो गुड.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So £1 in British sterling can get you up to 126 Indian rupees, 371 Pakistani rupees, 448 Sri Lankan rupees, 163 Bangladeshi taka, 84 Afghani afghans and approximately $1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan

0: ये जो चिल मन है, दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी, काका जी एंड लीना चंद्रवर्कर के बीच क्या ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी। वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर।
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: तुम कम सिन हो, रफी साहब की आवाज. आई थिंक दिस सॉन्ग वाज सो एप्ट फॉर सायरा बानू जी. आई थिंक शी वाज सो ब्यूटीफुल इन दिस मूवी एंड राजेंद्र कुमार एंड उनकी केमिस्ट्री वाज लाइक अमेजिंग.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Leica Gold.

0: जी हाँ, मुंगड़ा मुंगड़ा. अच्छा, डू यू नो व्हाट मुंगड़ा मीन्स? वेल, इफ यू नो व्हाट मुंगड़ा मीन्स, देन मैसेज मी. इट इज अ मराठी वर्ड एंड इन मुंबई वी यूज टू यूज दिस क्वाइट ऑफ्टन. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ उषा मंगेशकर एंड हेलन जी वॉज अमेजिंग इन द सॉन्ग, लाइक एनी अदर सॉन्ग दैट शी इज डन.
1: Sarita Sabharwal, the biggest classics on Like a Gold.

0: गाड़ी जब छूट जाती है तो
1: और भी हसीन हो जाती है. दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम द सुपर डुपर हिट मूवी शोले. आई थिंक धर्म जी एंड इमाम अली वर सुपर्ब इन द सॉन्ग. वन मोर लवली ट्रैक दिस आवर, अ सुपर रोमांटिक ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी. एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर. स्टे ट्यून्ड ऑन लाइक अ गोल्ड.
2: अनदर ह्यूज गिव अवे इज कमिंग. लाइक अ रेडियो नेटवर्क.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
1: बोले तू ये क्या कर रहा है रे?
2: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
3: ये तो बताओ, कोई पता चला?
4: गुरु गुरु, इस 19 जून को द प्रिंस रीजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है। सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 19 जून।
5: साधु, तो शुभकामनाएं देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
6: शीघ्र शीघ्र।
4: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन 19 जून। टू बुक कॉल 0208-514-5400। बुक ऑनलाइन एट Eventbrite।
7: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड।
8: चलो जाइए एक नवा सफर पर।
9: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थळोनी मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे। कंपाला, नैरोबी, मुंबासा, जांजिबार आणि दार एस सलाम साथे जिंजा आणि मचिसन फॉल्स।
10: बस पैक करो आणि रिलैक्स थई जाओ,
9: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे। वधु माहिती माटे
10: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
9: 0116266481 पर। वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर।
11: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
12: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
13: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
14: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
13: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
14: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
13: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
14: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
13: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCNPRA.
15: The voice that touches every soul. Star Express presents Hariharan's Soul India.
16: Live in London. Experience an unforgettable evening with the legendary Hariharan.
15: Saturday, 4th July at the Royal Festival Hall. For bookings, visit southbankcentre.co.uk.
16: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
17: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
18: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
17: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
18: गारंटेड।
17: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
18: फोन 0208574-8410।
17: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 0208574-8410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
19: हेलो, केचो मुचु केची दवेना आ शू थयो? अरे पब्लिक डिमांड फरीती आवी रही छु। लंडन मारो नवो नाटक लईने पत्नी प्रीमियर लीग એટલે કે PPL। यस, फ्रॉम 3rd जुलाई टिल 12th ऑफ जुलाई। वाओ, एंड दिस इज बीइंग प्रेजेंटेड बाय पंकज सोडा गैलेक्सी शोज। याद रखो,
2: पत्नी प्रीमियर लीग शोज एट राइसली, अल्बर्टन, ईस्ट एंड साउथ लंदन, लोअर होम, लेस्टर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दीपा ऑन 0794756194।
8: राम कृष्ण हरी, यूके तयार आहात ना? ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार व्हायला येत्या 6 जून ला होते वाद्य महोत्सव 2026 रॉयल विंडसर रेस कोर्स SL4-5JJ। 100 ढोल, 80 ताशे, मराठी खाद्य संस्कृतीची चव घ्यायला आणि मराठी उद्योजकांना भेटायला नक्की या। महाराष्ट्राची परंपरा, संस्कृती आणि आनंदाचा जल्लोष आणि विठ्ठल नामाचा गजर हा सोहळा तुम्हाला लाईव्ह बघायला नक्कीच आवडेल। थेट भारतापासून यूके पर्यंत सर्वांना जोडणारा एकच नाद वाद्य महोत्सव। टिकट्स आता उपलब्ध आहे svrtuk.org। जय हरी विठ्ठल।
3: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath, over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care, available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
6: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208 900 2323 or visit startours.co.uk.
20: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: है किसी के प्यार में किशोरदा एंड लता मंगेशकर फ्रॉम द मूवी रामपुर का लक्ष्मण. दिस लवली ट्रैक, आई जस्ट लव द रोमांस इन द सॉन्ग. वेल एक और गाना दिस आवर एंड इट्स टाइम फॉर मी टू से बाय, बट हम एन आई प्यार के फिल्म मिलेंगे चलते चलते एंड ऑफ कोर्स इट्स टाइम फॉर सैंडी सो गिव हिम लॉट्स ऑफ लव ऑन विंटेज गोल्ड.
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे, दिस इज लाइक अ गोल्ड.

0: Vintage Gold, every weekend with Sandy Shah. WhatsApp message Leica Gold now on 07442 23 23 23.
1: Hi, मैं हूँ अश्विनी. हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे Leica Gold Radio London and Greater Manchester in the evening show with Ashwini. Features बड़े ही interesting, amazing आप सभी के.

0: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics. WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323.
1: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ मंडे टू फ्राइडे। जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच मंडे टू फ्राइडे, मनोरंजन विद रवि शर्मा।

0: After the messages coming up, you're going to hear a delightfully feel-good song, a beautiful duet, Shimshad Begum, Muhammad Rafi Saab, C. Ramchandra ka Sangeet, film ka naam hai Patanga from 1949.
1: Sandy Shah continues with London's biggest Bollywood classics.
2: Laika Gold.
3: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.

0: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: ना तो आज बरसात का मौसम, ना कहीं छाई बदरिया।